एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

0: श्री रामानंदन भगवान की जय। श्री आनंदकंद भगवान की
1: जय।
0: श्री कौशल्यानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रानंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारों भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान जी महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास तथा कर्म हालांकि दोनों ही मुक्ति पथ को जाते हैं, फिर भी संन्यास अपेक्षा कर्म अधिक विशिष्ट कहलाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सांख्य दर्शन एवं कर्म अथवा भक्ति को एक समान समझने वाले ही वास्तव में ज्ञानी हैं।

मधुसूदन कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल को ब्रह्म समर्पित करने से मानव फल बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि काम एवं क्रोध से उत्पन्न वेग को सह पाने वाले ही जीवन में सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण योग विधि पर भी प्रकाश डालते हैं।

पड़ाव की मौन साक्षी है, जिसके तट पर शताब्दियों पहले सभ्यता का सूर्य उगा, धरती में जीवन के अंकुर फूटे, फसलें लहलहाई, मानव का आंचल सोने के दाने से भर गया। उसका मन नाच उठा।

0: ताप्ती और संवरण के विवाह की एक सुंदर कथा आती है। कहते हैं संवरण वरुण के अवतार थे। उन्हें ऋषि अगस्त के शाप से मौनी जन्म ग्रहण करना पड़ा था। स्थानीय महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामकांत कुलकर्णी ने बताया,
1: पुराणों में एक ऐसा प्रसंग आता है कि अमृत मंथन के बाद वरुण देवता सुरा का कलश लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में ठहरे। ऋषि आश्रम में नहीं थे। वरुण ने मदिरा का जी भर कर पान किया और आश्रम की स्त्रियों के साथ रंग रेलिया मनाने लगे। ऋषि लौटकर आए तो इस उद्धत व्यवहार को देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने वरुण को शाप दे दिया, देवाधन तूने आश्रम की पवित्रता को खंडित किया है, जा मृत्युलोक में जन्म लेकर शापित जीवन बिता। वरुण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे मुनि से क्षमा याचना करने लगे। मुनि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु यथा समय ताप्ती से तुम्हारा विवाह होगा और पुत्र जन्म के साथ तुम शाप मुक्त हो जाओगे।
2: इस तरह वरुण को धरती पर आना पड़ा।
0: एक दिन महर्षि श्रृंग मेखल ने उन्हें सूर्य की तपस्या करने का उपदेश दिया।
3: वत्स, मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुआ।
4: प्रभो, मैं कुरुवंशी राजकुमार ऋतुपुत्र संवरण आपको प्रणाम करता हूँ।
3: सफल मनोरथ हो, वरदान मांगो।
4: आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
3: हम और भी प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें अपनी तेजस्वी कन्या ताप्ती का हाथ देता हूँ। इसे सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार करो।
4: मैं अनुग्रहित हुआ।

0: पर एक ताल बना दिया है। ये एक पवित्र तीर्थ है।
1: इस सरोवर का महत्व बताते हुए बैतूल महाविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर पांडे कहते हैं,
2: बैतूल जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर स्थित मुल्ताई नामक शहर के मध्य के पवित्र जलकुंड से ताप्ती का उद्गम माना जाता है, किंतु वास्तव में मुल्ताई से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर 790 मीटर ऊंची सतपुड़ा की एक पर्वत श्रृंखला से यह नदी निकलती है।
1: मुल्ताई महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक शुक्ल बताते हैं,
3: मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यह 21 कल ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की विशेषता यह है कि इसके किनारे बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सात कुंड हैं।
1: मुल्ताई के वयोवृद्ध नागरिक रामजीराव बाबूराव पाटिल इस सरोवर के ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी देते हुए कहते हैं,
4: सन 1763 के लगभग जाने जी भोसले ने उस तालाब के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। आज जो ताप्ती तालाब की पाषाण की सीढ़ियों से बना हुआ जो नैनाभिराम तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है, वह वास्तव में जाने जी भोसले ने बनवाया था इस उपलक्ष्य में कि इस नदी के जल से मेरा रोग दूर हुआ है, इसलिए इस उपलक्ष्य में इन्होंने इसको बनाया था। यहाँ तात्या टोपे भी 1858 में आए थे। यहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक कसरफी सोने की दक्षिणा में भी दी थी। अंग्रेजों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने यहाँ आकर जिन जिन लोगों को उन्होंने असरफियाँ प्रदान की थी उन सब से वो असरफियाँ लेकर और उनको सजा भी दी थी।
0: कई लोग यहाँ पिंडदान करने भी आते हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन कर अपने पितरों की आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त

सदियों पहले आभीरों ने ताप्ती के तट पर बस्तियां बसाई। आभीर एक वीर आर्य जाति, गौरा रंग, ऊंचा कद, लंबी भुजाएं और चौड़ा वक्षस्थल। देखते ही देखते सारी उर्वर घाटी में उनकी बस्तियां फैल गई।

आते और जाते रहे, सत्ताएं बनती और बिगड़ती रहे, राज्य फैलते और सिकुड़ते रहे। सातवाहन और शकों में युद्ध हुए, शकों और आदिरों की तलवारें टकराई, चालुक्य और राष्ट्रकूट, यादव और यवन अपनी अपनी सत्ता के

0: भी खड़ा है, निश्चल और अधिक,
1: जिसकी एक एक दीवार खांडिश के गौरव में अतीत की कहानी कह रही है, जिसका एक एक पत्थर पंतपाल चौहान और इष्टपाल हांडा के शौर्य की गाथा गा रहा है।
2: यह मिट्टी हमारी

0: हमारा गौरव है, हमारा सर्वस्व है। आज इसकी रक्षा में प्राण देने की घड़ी आ गई है। बोलो, तैयार हो?
1: हम तैयार है।
0: हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे,
1: जरूर लड़ेंगे।
0: सिर सिर कट जाएंगे पर घुटना नहीं टेकेंगे,
1: घुटना नहीं टेकेंगे।
2: खानदेश की धरती पर ताप्ती की लहरों को छूता हुआ एक और किला है थानेर।

0: सेवाएं प्रदान करते हैं।
1: उर्वराज के पास जहाँ पूर्णा नदी ताप्ती के प्रवाह में आकर मिलती है वहाँ विद्यमान है चांगदेव महाराज की समाधि। कहते हैं चांगदेव एक शापित मरुदगण थे जिन्हें संत ज्ञानेश्वर की कृपा से पुनः परम पद प्राप्त हुआ था।

0: उसके महत्व का वर्णन करते हुए राजनाथ भट्ट कहते हैं,
1: प्रकाश ठाकुर उसको प्रतिकाशी कहा है। प्रतिकाशी इसलिए कि बनारस वगैरह या तो फिर अपने पूरे भारत वर्ष के अंदर पुष्पदंतेश्वर नामक महादेव का दर्शन भक्तजनों को कहीं भी मिलता नहीं है। कोई भक्तजन यहाँ आकर के लेते हैं और कृतार्थ होते हैं। और ऐसा कहा जाता है इधर या तो अपने पूरे भारत वर्ष में कि भाई तीर्थ यात्रा तो अपन ने की, लेकिन यहाँ प्रकाशिया चलो तो फिर जो कुछ भी थोड़ा बाकी है वो मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और नानाधिक कर्म करके पहले पुष्पदंतेश्वर भगवान का महादेव का दर्शन लेते हैं। संस्कृत में तापी के बारे में जो कुछ भी बताया है तापी महात्मा के अंदर, तो गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र च सुंदरी, गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र च सुंदरी सर्वत्र दुर्लभा तापी त्रिशु स्थाने विशेषतः।
2: यह ताप्ती की धारा भगवान पुष्प दंतेश्वर केदारेश्वर

0: वह ताप्ती का मंदिर है। यहाँ 12वें वर्ष सूर्यास्त पर्व पर मेला लगता है। ताप्ती महात्म्य का पारायण किया जाता है।
1: तो सज्जनों, गंगा ने धरती पर आना तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसने शंका प्रकट की कि धरती पर ताप्ती जैसी पवित्र नदी के रहते मुझे कौन पूछेगा। गंगा का प्रश्न सुनकर शंकर भगवान ने नारद मुनि को आज्ञा दी कि जाओ और ताप्ती का महात्म्य हर लाओ। नारद आए, परंतु उन्हें चोरी का कलंक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ताप्ती ने स्वयं अपना महात्म्य ताक दिया, उसे पानी में प्रवाहित कर दिया और इस प्रकार सज्जनों गंगा धरती पर आ गई। बोल ताप्ती माता की जय।
2: जिस प्रकार प्रकाशा में तीन धाराओं का संगम है, उसी प्रकार ताप्ती का ये प्रदेश तीन संस्कृतियों का संगम है।
0: बलों और पर्वतों में इकलौती बल खाती श्वेत शुभ्र धारा क्षीण धारा समतल प्रदेश में पहुँच कर विस्तृत नदी का रूप धारण कर लेती है और तब शुरू होती है उसकी लोक साधना।

0: देश के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। उदय के शेषराव गावंडे इसका विवरण देते हुए कहते हैं,
1: नेपाल के पूर्वी भाग में करीबन 6-7 मील दूरी पर डर गांव के समीप अर्थात किशनबा के पास करीबन 30 मील के क्षेत्र में कोयला बहुत तरह से रूप में पत्थरों में चमकीले शंख पाए जाते हैं तथा रवेदार चमकदार पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कुआ आदि खोदने से कोयले की मात्रा अभ्रक निकलता रहता है और तापी के जल में बहुत आयत रूप से कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक है।
0: ताप्ती के प्रवाह पर कई छोटे बड़े बांध बांधे गए हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं खरिया घीटू और नवाथा। इन बांधों के निचले नहरों ने किसानों के जीवन में नई क्रांति ला दी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का 1.25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र इन सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित हुआ है। बैतूल के मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के तंत्री इंद्र सिंह गौड़ ताप्ती के जल ग्रहण क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताते हैं,
2: ताप्ती नदी की लंबाई उद्गम स्थान से संगम तक 730 किलोमीटर है। उसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 332 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 217 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर है। निर्मित 20 लघु योजनाओं से 905 हेक्टेयर इरिगेशन होता है। इस निर्माणाधीन 18 लघु सिंचाई योजनाओं से 5400 हेक्टेयर इरिगेशन होगा। 27 एक वर्ग सिंचाई योजना और 45 लघु सिंचाई योजनाओं से 37200 हेक्टेयर में इरिगेशन होगा।

0: गुड़िया जिले का लोअर ताप्ती प्रकल्प लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन को सुजलाम सुजलाम होने का वरदान देता है। ताप्ती जल विकास परिषद के अध्यक्ष पीके अन्ना पाटिल कहते हैं,
1: कई साल से ताप्ती का पानी यूज हो रहा नहीं था, अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था कि जिसको ताप्ती बसिन बोलते हैं। उस ताप्ती बसिन का अगर विकास करना है तो ताप्ती और उसके प्रभुत्व का पानी इस्तेमाल करने के सिवा इसका विकास हो नहीं सकता है। अब हम पानी के इस्तेमाल के लिए तो डैम बनाएंगे, खुरिया घाटी में मावथा में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर अपर तापी लोअर तापी इसमें डैम बना के उनका वितरण करेंगे। ग्रामीण को हम एक प्रस्ताव देंगे, वो इस विकास के लिए तापी अथॉरिटी क्रिएट की जाए। उस अथॉरिटी के हिसाब से 10 साल के अंदर इसका पूरा विकास हो सके, पानी का इस्तेमाल हो सके।
2: गुजरात में प्रवेश करते न करते ताप्ती का प्रभाव एक विशाल महानद बन जाता है। भूकर भोर

0: मात्रा कहते हैं।
1: उकाई बांध के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन और सबसे महत्वपूर्ण बाढ़ नियंत्रण। उकाई बांध से सीधा 152,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इसके अलावा उकाई बांध से सातरा पर यह को भी पानी दिया जाता है, जिससे 227,500 रुपये की सिंचाई होती है। इस योजना से सूरत, बलसाड और भरूच जिले के अधिकांश भाग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा 300 मेगावाट पनबिजली भी तैयार की जाती है। प्रतिवर्ष 5,000 टन मछली का उत्पादन किया जाता है।
2: उकाई बांध मशीनरी विभाग के उप कार्यकारी अभियंता आर जे मंडालिया बांध के विषय में और जानकारी देते हुए कहते हैं,
3: कई जलाशय में गुरुत्म पानी की संग्रह शक्ति 6.9 मिलियन एकड़ फीट की है और जिसमें से 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली के लिए किया जाता है। उकाई बांध की लंबाई 5 किलोमीटर है। उकाई माटी बांध की महत्तम ऊंचाई 68 मीटर है और पक्का बांध की महत्तम ऊंचाई 80 मीटर है। छलती बांध में 22 दरवाजे लगे हैं, जिनके द्वारा 18 लाख घन फुट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा सकता है।
2: ताप्ती के अंतिम पड़ाव पर स्थित है सूरत, गुजरात का स्वर्ण नगर सूरत, जिसने इतिहास देखा ही नहीं बल्कि इतिहास का स्वयं निर्माण किया है। मुगलों के आक्रमण से लेकर स्वतंत्रता संघर्ष तक की असंख्य गौरव गाथाएं जिसकी गलियों में गूंजती रही है। सोनगढ़ और सूरत के गढ़ जिसके पहरेदार रहे हैं। सूरत के एनटीबी आर्ट्स कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मेघानी बताते हैं,
4: प्राचीन काल में या मध्यकालीन समय में सोलंकियों की तो सत्ता इधर थी ही, उसके बाद में जो स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई यानी सन 1411 के बाद, तब पहले हमें इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो यहाँ का सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड था, उसका पुत्र मस्ती खान यानी सूरत और रामदेव का गवर्नर था, ऐसा उल्लेख मिराते सिकंदर में सर्वप्रथम हमें मिलता है।
2: प्रोफेसर मेघन सूरत के किले की सुदृढ़ता का वर्णन करते हुए कहते हैं,
4: आफ्टर 1573 यानी 1573 के बाद मुगलों की सत्ता हुई, अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बाद इस सूरत का पूरा को पूरा व्यापारी कारोबार या एडमिनिस्ट्रेशन सब मुगलों के द्वारा चला। यह सिलसिला इसी सन 1759 तक चला। उसके बाद में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और तब तक मुगलाई चली, तो अकबर ने पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूरत को बनाया था 1573 के बाद, तो उसमें क्या था कि सिटी में 2 गवर्नर थे और दोनों की सत्ता समान थी, दोनों एक दूसरे पर निगाह रखता था। किले का अलग गवर्नर था, उसका काम किले का रक्षण और तापी का रक्षण और लेवल बेस को संभालना था, और दूसरा शहर का गवर्नर था।
2: किले के निर्माण के संबंध में वे बताते हैं,
4: सल्तनत काल में मोहम्मद तृतीय करके जो सुल्तान था, उसके टाइम में सूरत का गवर्नर था खुदावन खान उर्फ ख्वाजा सफर सलमानी, तो उसने पोर्चुगीजों की रीढ़ के सामने यानी पोर्चुगीजों के हमले के सामने सूरत सिटी का रक्षण करने के लिए इस किले का निर्माण कराया था 1540-41 में, और कहते हैं कि वो किला इतना मजबूत था कि अकबर को भी इस किले को लेने के लिए 1 महीना और 17 दिन लगे थे।
2: सूरत जो अपनी संपत्ति और समृद्धि से सदा से संसार को ललचाता रहा है, उसका सांस्कृतिक महत्व बताते हुए दास बहादुर वाई वाला,
5: सूरत उसका पुराना नाम सूर्यपुर है, इसके आगे रांदेल था, सूर्य पत्नी का नाम रांदल और रांदल का जो स्थान है वो रांदेल में है, और सूर्य की तपोभूमि सूर्य के पास कतार गांव बोला जाता है, वहां पर सूर्य ने तप किया ऐसी बात है, और सूर्यपुर का अश्विनी कुमार यहाँ पर पढ़े वो अश्विनी कुमार नाम अभी भी है।
2: इस आकर्षण में ही उसे दिए हैं असंख्य घाव, यही तो शिवाजी को मिला था अपार खजाना, यही चतुरंगी अपना विश्वव्यापी व्यापार संचालित करते थे। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हीरालाल गांधी कहते हैं,
0: सूरत को कहा गया है सोने की मूरत। सूरत मुगल शाही जमाने में एक अच्छा सा बंदर था, वही आकर्षण की वजह से पहला ब्रिटिश जहाज सूरत में आया और सूरत से आयात निर्यात का व्यापार कई सदियों पहले हो रहा था। सूरत में है मक्काई पुल, सूरत में है मुगल सराय, जहाँ से हज के लिए मक्का जाने के लिए ये बंदर था।
2: आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास में भी सूरत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमेश गजीवाला बताते हैं,
6: सूरत में जो विकास हुआ उसमें

0: कृषि आधारित उद्योगों का हुआ। वो कृषि आधारित उद्योगों में पेपर मिल, कैटल फीड डैम, फिशिंग एंड मरीन इंडस्ट्री का विकास उसमें हुआ। वो खास करके सूरत के आदिबाजू के विस्तार में हुआ। दूसरा जो छोटा इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है और विकेंद्रित क्षेत्र में है, वो टेक्सटाइल। आज कम से कम सूरत में 3 लाख टावर लूम काम कर रही है। रासायनिक उद्योग में कम से कम सूरत में 400 यूनिट्स हमारे यहाँ है। ये डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री सूरत में बड़ी जोरों से चल रही है। 3 लाख आदमी उसमें रोजी पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमंड है वो अमेरिका, बेल्जियम, इंग्लैंड, जापान और हांगकांग में भारत से जा रहे हैं।
1: ताप्ती तट के मेलों और उत्सवों में पारंपरिक

0: बैठकर साहित्य की ऊंचाइयों को छुआ है। गुजरात के साहित्यकार भगवती कुमार शर्मा बताते हैं,
1: गुजराती साहित्य के जो पहले अर्वाचीन कवि हुए, कवि नर्मद जो सूरत के थे, गुजराती भाषा का जो पहला उपन्यास नॉवल लिखा गया करम घेलो, वह भी सूरत में लिखा गया और उसके लेखक नंद शंकर तुलजाराम मेहता भी सूरत के थे। गुजरात के ख्याति प्राप्त, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्यकार जो हुए चंद्रगदन मेहता, वो भी सूरत के थे और सूरत में पैदा हुए, उनकी परवरिश भी हुई।
2: प्राप्ति के पथ पर स्वतंत्रता का भी उद्घोष हुआ। सूरत जिला तो इस क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। बास बहादुर सवाई वाला कहते हैं,
3: महात्मा गांधी जी ने सूरत के पादरी आश्रम में कहा था कि मैं ये ब्रिटिश की जड़ उखड़ने वाला हूँ। दांडी कूद भी सूरत जिले में हुई और बारगोली का सत्याग्रह पहला हुआ और उसमें विजय पाई तो जो पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार सत्य वहां से मिला,

बिना उस यात्रा का अंत है? शायद नहीं, क्योंकि उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। वो तो युगों युगों से बह रही है, अथक अविराम अश्राम।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि देवी गंगा शिव पुत्र उत्पत्ति के बीज के तेज और ताप से विचलित हो उठी थीं। नारद मुनि के परामर्श से उन्होंने ये बीज अपने ही जल में प्रवाहित कर दिया। बीज सरकंडे के खेत में जा उलझा। उससे छह मुख वाला एक अति दिव्य शिव पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रकृति की कलाओं और कृतिकाओं के आग्रह पर देवी पार्वती और देवाधिदेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को कुछ वर्षों के लिए उन्हें सौंप दिया। कार्तिकेय जन्म से तारकासुर भयभीत हो उठा। दैत्य साम्राज्य बचाए रखने के लिए दैत्य माता दिति ने सेना का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। असुरों के पुनः बढ़ते अत्याचारों के कारण प्रभु शिव शंकर ने पुत्र कार्तिकेय को वापिस बुलाने का निर्णय लिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, देवाधिदेव के इस आकस्मिक निर्णय से कृतिकाएं तो बहुत दुखी हुई होंगी।
2: विप्रवर शौनक जी, तीव्रता से परिवर्तित होते घटना चक्र से अनभिज्ञ कृतिकाएं तो बालक कार्तिकेय पर अपना संपूर्ण मातृत्व न्यौछावर करने में व्यस्त थी। उन्होंने कुमार कार्तिकेय को ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, यहां तक कि युद्ध कला सिखाकर महादेव के ही कथन की सत्यता प्रमाणित की थी।
1: महादेव के कथन की सत्यता? आप किस कथन के विषय में कह रहे हैं सूत जी?
2: स्मरण करें शौनक जी, जब महादेवी पार्वती ने कुमार को कृतिकाओं को सौंपे जाने पर आपत्ति प्रकट की थी, तब स्वयं महादेव ने कृतिकाओं के कौशल की सराहना की थी। महादेवी को समझाया था कि वे कुमार का उत्तम लालन पालन करने में सक्षम हैं।
1: हे महाभाग, प्रकृति की सक्षमता पर कौन प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? फिर क्या हुआ? मुनि नारद और नंदी के आगमन पर कृतिकाओं की क्या प्रतिक्रिया हुई?
2: शौनक जी, अचानक इतने

0: बल? कैसा बल देवी कृतिका?
1: आयुधों से लैस ये रथ, अस्त्रों से सुसज्जित ये सहस्त्रों शिवगण।
2: नारायण नारायण। कृतिकाओ, लगता है आप महाप्रभु के स्वभाव से अपरिचित हैं। अकारण बल प्रयोग में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है, और वो भी स्त्रियों के विरुद्ध। नारायण नारायण, वो तो कदापि नहीं।
1: तो फिर यह विशाल सैन्य बल किस लिए?
0: देवी, ये सहस्त्रों शिवगण अपने कुमार का स्वागत करने आए हैं। शस्त्र इसलिए साथ लाए हैं कि कहीं मार्ग में असुरों से भेंट ना हो जाए।
1: परंतु अचानक देवाधिदेव को कुमार कार्तिकेय की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? वे यहाँ अति प्रसन्न हैं।
2: हम जानते हैं कृतिकेय, कुमार यहाँ प्रसन्न ही नहीं, आनंद से भी हैं। यदि वो आप ही के पास रहते तो देवी पार्वती और महादेव को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु लोक कल्याण हेतु उनका लौटना आवश्यक हो गया है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ है, देवी, उसे पूरा करने का समय आ गया है।
0: और यही शिवाज्ञा है।
3: माताओं, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है।
1: पुत्र कार्तिकेय, क्या पिता की आज्ञा के समक्ष माता की ममता, उसका स्नेह कोई महत्व नहीं रखती?
3: माते, आप ही की शिक्षा है कि हर वस्तु का अपना महत्व अवश्य होता है, परंतु ये समय की मांग पर निर्भर होता है कि कब कौन सी वस्तु अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। इस समय लोक कल्याण के लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है।
2: नारायण नारायण। तितिकाओ, धन्य है आप, आपसे ऐसी ही शिक्षा की अपेक्षा थी। आपको तो अपने इस दत्तक पुत्र पर गर्व होना चाहिए।
1: हम सब जानती थीं कि तुम हमारे पास महाप्रभु की धरोहर हो, और उनका हम पर महा उपकार है। इस धरोहर को उनके मांगे जाने पर लौटाने के लिए हम वचनबद्ध भी हैं। जाओ पुत्र कार्तिकेय, पिता के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करो, किंतु हमें भी स्मरण रखना पुत्र।
3: माते, आपने हमें पाला पोसा है, और पालन करने वाली माता का स्थान जन्म देने वाली माता से भी उच्च होता है। आपका स्मरण हम हर पल करते रहेंगे। हमें आशीर्वाद दें, जिस कार्य हेतु हम जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले।
1: विजयी भव पुत्र कार्तिकेय, आयुष्मान भव।
4: कुमार कार्तिकेय की जय। देवी कृतिकाओं की जय। शिव पुत्र की जय।
5: दैत्य माता दीदी की जय।
1: दैत्य सेनापति, इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? क्या समाचार लाए हो?
5: नारद और नंदी शिवपुत्र कार्तिकेय के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देवता भी वहाँ एकत्र हो चुके हैं।
1: तो इसमें चिंता की क्या बात है? तारकासुर को वरदान है कि वह शिवपुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य के हाथों नहीं मारा जा सकता, और शिवपुत्र अभी बहुत छोटा है।
6: एक छोटी सी चींटी ही विशाल गजराज के मृत्यु का कारण बन जाती है दैत्य माता।
1: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि दैत्यों के प्रति आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है। आप उनका हित सोचने के स्थान पर उनसे विमुख होते जा रहे हैं।
6: यदि मैं अपने शिष्यों से विमुख हो गया होता तो उनकी प्राण रक्षा के उपाय ना सोच रहा होता। विशेष रूप से अपने प्रिय शिष्य तारकासुर की प्राण रक्षा का उपाय।
1: तो क्या उपाय सोचा आपने?
6: क्षमा, क्षमा ही एकमात्र उपाय बचा है।
1: क्षमा? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी दैत्य गुरु।
6: शिव से क्षमा मांगने पर ही तारकासुर की प्राण रक्षा संभव हो सकती है।
1: दैत्यों के विरोधी देवता दैत्यों को ही क्यों क्षमा करेंगे?
6: दैत्य माता, देवता कभी अपने गणों में भेदभाव नहीं रखते। सुर असुर, मानव चर अचर, सब उनके गण हैं। और फिर शिव की तो गोत्र ही क्षमा है। मुझे स्मरण है शिव पार्वती विवाह का वो प्रसंग, जब स्वयं ब्रह्मा ने उन गोत्रहीन को

0: कोच प्रदान की थी।
1: ये क्या सोच रहे हैं क्या कर रहे
2: हैं श्यामा
1: श्यामा
2: गोत्र
1: ब्रह्मा जी के गोत्र
2: ये कैसे हो सकते हैं
0: दैत्य माता दिति इसके पश्चात उन्होंने क्रोध में आकर भस्म किए गए कामदेव को भी क्षमा करते हुए उन्हें पुनः जीवित कर दिया।
3: एक देवता ने दूसरे देवता पर उपकार किया परंतु दैत्यों से देवता घृणा करते हैं और हम दैत्य देवताओं से घृणा करते हैं। वे पग पग पर हमारे अपराधी हैं। दैत्य साम्राज्य में क्षमा नाम का शब्द नहीं होता शुक्राचार्य। हम मात्र दंड देते हैं अपने विरुद्ध किए गए कुकर्मों और अपराधों का। देवताओं ने हमारे विरुद्ध अपराध ही अपराध किए हैं। वे हमारे दंड के भागी थे हैं और रहेंगे।
0: और दैत्यों के अपराधों का दंड उन्हें कौन देगा?
3: कैसे अपराध? कौन से अपराध?
0: साम्राज्य विस्तार के लिए निरीह निरपराध प्राणियों की हत्याएं, नारियों का बलात्कार, शिशुओं का हृदय भेदन।
3: साम्राज्य विस्तार की शिक्षा आप ही ने हमें दी है शुक्राचार्य।
0: परंतु निरीह जीवों को सताने की शिक्षा कभी नहीं दी। उच्च कोटि के ब्राह्मण होने के पश्चात भी हम दैत्यों के गुरु बने। हमारा समान अधिकार में विश्वास था, इसीलिए हम दैत्यों को भी उनके अधिकार दिलाना चाहते थे। परंतु दैत्यों ने अहंकार में आकर उस अधिकार का दुरुपयोग किया है, हमारी शिक्षा का अपमान किया है।
3: दैत्यों की निंदा करके तुम हमारा अपमान कर रहे हो शुक्राचार्य। जाओ, हम तुम्हें दैत्य गुरु के पद से हटाते हैं। हमारे सम्मान में तो स्वयं शिव भी शीघ्र अपना पद त्यागने वाले हैं। ऐसे में आपका मूल्य ही क्या है?
0: अरे मूढ़ मत दीदी, तू दैत्य वंश का नाश करने पर तुली है। तेरे नेत्रों पर अहंकार और दंभ की पट्टिका बनी हुई है। तू सृष्टि रचयिता का स्थान लेने का स्वप्न देख रही है? देख, अवश्य देख, परंतु सृष्टि रचयिता और पालक की संहार शक्ति भी देख। हम जा रहे हैं।
3: जाइए दैत्य गुरु, जाइए। तारकासुर।
4: श्री दैत्य माता,
3: विगत में देवताओं की श्रेष्ठता के बारे में फैले इस भ्रम को तुम अपने बाहुबल से तोड़ चुके हो। अब देवताओं के भी देवता उस शिव के प्रति फैले भ्रम को समाप्त करने का समय आ गया है।
4: परंतु दैत्य माता,
3: क्या हिरण्यकशिपु का वंशज वज्रांग पुत्र तारकासुर एक छोटे से बालक से भयभीत हो उठा है?
4: नहीं दैत्य माता, नहीं। हम
3: या देवताओं को सदा परास्त करने वाला तारकासुर युद्ध कला भूल गया है?
4: दैत्य माता, आप
3: तो निश्चय ही अपनी माँ के दुग्ध के स्थान पर तुमने जल का पान किया होगा।
4: दैत्य माता, हमारी माता के दुग्ध का अपमान ना करें।
3: अपमान हम नहीं तुम कर रहे हो तारकासुर। एक दैत्य माता के दुग्ध का मूल्य चुकाने के अवसर पर तुम पीछे हट रहे हो।
4: बस बस, और कुछ ना कहिए। अपने प्राणों पर खेल कर भी ये तारकासुर अपनी माँ के दुख को अपमानित नहीं होने देगा। दैत्य सेनापति,
5: आज्ञा सुरराज।
4: समस्त दैत्य सेना को आदेश दो, वो वही सागर संगम पर एकत्र हो। कार्तिकेय को हम वही युद्ध के लिए ललकारेंगे।
5: जैसी आज्ञा दैत्यराज।
4: दैत्य माता, आशीर्वाद दे कि हम शिव पुत्र के छहों शीश आपके चरणों में अर्पित कर दे। दैत्य माता, आपके चरणों में अर्पित कर दे।
3: ऐसा ही होना चाहिए तारकासुर।
4: सेनापति प्रस्थान।
6: दैत्यराज तारकासुर की जय।
7: दैत्य माता दिति की
6: जय।

0: कार्तिकेय की
1: जय हो,
2: महादेव महादेवी की
1: जय हो,
2: महादेव महादेवी की
1: जय हो,
2: महादेव महादेवी की
1: जय हो।
3: विष्णु हरे, शिव पुत्र के दर्शन कर मन आनंद से भर उठा है। देखिए ना, रथ पर आरूढ़ षडानंद कार्तिकेय कैसी अद्भुत किरणों से प्रकाशमान हो रहे हैं।
4: हाँ विधात, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं भगवान शिव इस बालक में अवतरित हुए हों।
3: उधर माता पार्वती और महाप्रभु के मुखमंडल पर भी तो पुत्र मिलन के इस अवसर पर स्नेह का प्रकाश चमक उठा है।
4: अरे देखिए विधात, रथ से उतरकर कुमार कार्तिकेय इसी ओर आ रहे हैं।
5: प्रणाम पिताजी, प्रणाम माते।
6: चिरंजीवी भव पुत्र कार्तिकेय।
5: प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम श्री विष्णु हरि।
6: आयुष्मान भव।
5: पिताजी, मार्ग में भ्राता नंदी कह रहे थे कि आपने किसी विशेष लोक कल्याण कार्य के लिए हमें स्मरण किया है। आज्ञा ने पिताजी, हमें क्या करना होगा?
6: पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें सहस्रों वर्षों से चले आ रहे तारकासुर के अत्याचारों का अंत करना है, उसका वध करना है। जाओ, देवताओं और शिवगणों की सेना का नेतृत्व करो और विधि के इस विधान को पूरा करो।
7: परंतु हे नाथ, पुत्र कार्तिकेय का अभी तो आगमन हुआ है, आप तुरंत ही उन्हें रणभूमि में भेज रहे हैं, थोड़ा विश्राम तो करने दें।
6: देवी पार्वती, विश्राम का एक एक पल तारकासुर के बल को प्रोत्साहित करेगा।
7: स्वामी, ये भी तो देखें, कुमार अभी कितने छोटे हैं, उस अति बलशाली राक्षस का सामना कैसे कर पाएंगे?
3: देवी पार्वती, पुत्र गणेश तो आपके शरीर के मैल से उत्पन्न हुए थे और नवजात थे, फिर भी आपकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। स्वयं देवाधिदेव ही उन्हें पराजित कर पाए थे।
4: फिर देवी, कार्तिकेय तो स्वयं शिव पुत्र हैं और बड़े भी हो चुके हैं, उनके बल पराक्रम पर तो किसी को भी संदेह तक नहीं होना चाहिए।
6: और पार्वती, हमने समय को ही दृष्टि में रखते हुए कुमार को यहां बुलवाया है। देवताओं, कुमार कार्तिकेय को दिव्य अस्त्र भेंट कीजिए और पुत्र, मैं तुम्हें अपना शूल, पिनाक और फरसा प्रदान करता हूँ।
3: ब्रह्मा का यज्ञोपवीत धारण करो पुत्र कार्तिकेय।
4: पुत्र कार्तिकेय, मैं विष्णु तुम्हें किरीट और सुदर्शन चक्र भेंट करता हूँ।
8: कुमार, इंद्र की ओर से ये एरावत हाथी और वज्र स्वीकार करें।
7: पुत्र कार्तिकेय, अपनी माता से तुम शक्ति को ग्रहण करो।
6: हे देवताओं, कुमार के नेतृत्व में अभीष्ट प्राप्ति की ओर अग्रसर होइए। नंदिकेश्वर, वीरभद्र,
9: आज्ञा स्वामी।
6: कुमार कार्तिकेय को हमने आपके संरक्षण में दिया।
9: हम धन्य हुए देवाधिदेव।
5: हे माते पार्वती, हे पिताजी, हमें आशीर्वाद दे कि तारकासुर का शीश हम आपके चरणों में लाकर अर्पित कर सके।
6: विजय भव पुत्र।
7: आयुष्मान भव पुत्र।
5: प्रस्थान हो।
1: प्रस्थान।
0: कुमार कार्तिकेय की
1: जय।
0: शिवनंदन कार्तिकेय की
1: जय।
0: तारकासुर संहारक कुमार कार्तिकेय की
1: जय।
10: अपने प्राण बचा तारकासुर, हम आ रहे हैं।
0: अरे अत्याचारी तारकासुर, तेरा अंत आ गया है।

0: दैत्यराज तारकासुर, वो देखिए उस दिव्य रथ पर बैठा छह मुखी बालक ही कार्तिकेय है।
1: क्या
2: वो है कार्तिकेय? अरे ये बालक तो हमारे पग की धूली के बराबर भी नहीं है, ये हमें क्या मारेगा? हम व्यर्थ ही भयभीत हो उठे थे। अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, ये किस छह अंगुल के छह मुखदारी बालक को लेकर हमारे वध की इच्छा से यहाँ आए हो? ये तो हमारी मुष्टि का एक प्रहार भी सहन नहीं कर पाएगा।
3: अरे अहंकारी तारकासुर, क्या तू देख नहीं रहा? तेरे समक्ष तेरा ही मांगा वरदान खड़ा है। यही वह शिव पुत्र है जिसके हाथों तूने अपनी मृत्यु मांगी थी। तेरी वही हार्दिक इच्छा पूर्ण करने के लिए कुमार कार्तिकेय तेरे साक्ष है।
2: ये हमें क्या हानि पहुंचाएगा? मैं अकेला ही इससे युद्ध करूंगा। मैं ही समस्त वीरों, प्रथम गणों, लोकपालों तथा विष्णु जिनके नायक हैं, उन सभी देवों को मार डालूंगा।
4: आक्रमण!
5: स्वामी कार्तिकेय, मुझ सेवक वीरभद्र के होते हुए आप युद्ध करें, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं अभी तारक को मारता हूँ।
4: आक्रमण!
3: श्री हरि, वीरभद्र ने त्रिशूल से तारकासुर को धराशायी कर दिया है।
6: परंतु ये क्या, क्षण भर मूर्छित रहने के पश्चात वो पुनः उठ खड़ा हुआ है? हा? हा? अरे ये तो रोम हर्षक युद्ध हो रहा है।
3: हाँ, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हैं। अरे तारकासुर ने अपने सिर देव सेना पर छोड़ दिए हैं। देवता आहत होकर इधर उधर भाग रहे हैं।
6: तारकासुर, मैं आया।
3: विष्णु हरे, ये आप, ये आप।
4: आक्रमण!
2: स्वयं लक्ष्मीपति विष्णु युद्ध भूमि में उतर आए हैं। स्वागत है। वर्षों से आपको युद्ध का अभ्यास ना हुआ होगा। आइए कुछ युद्धाभ्यास करा दूं। मेरा तो एक पद घात ही आपको युद्ध भूमि छोड़ने पर विवश कर देगा।
6: अरे ये क्या, सूर्यदेव, श्री विष्णु ने अपनी गदा उठा ली है,
7: परंतु तारकासुर ने त्रिशिख बाण मारकर उसके दो भाग कर दिए हैं। इंद्रदेव,
6: अरे अब भगवान ने शारंग धनुष उठा लिया है। ओह, तारकासुर ने भी भगवान पर बाणों की वर्षा कर दी है। अरे ये क्या, श्री हरि मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े हैं। परमपिता, परमपिता कुछ कीजिए, अन्यथा हमारी पराजय निश्चित है।
3: हाँ पुत्र कार्तिकेय।
8: आज्ञा ब्रह्मदेव।
3: मेरे वरदान के कारण तारकासुर सभी के हाथों अभेद्य है, उस पर मात्र तुम ही विजय पा सकते हो। जाओ पुत्र, तारकासुर के आतंक का अंत कर दो।
8: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है परमपिता।
6: अरे ये क्या, कुमार कार्तिकेय रथ से उतरकर पैदल ही तारकासुर की ओर बढ़ रहे हैं।
7: एक परम कांतिमान उल्का की भांति उन्होंने अपनी शक्ति को उठा लिया है। दैत्यराज, दैत्यराज कार्तिकेय इस ओर आ रहा है।

0: अरे मूढ़ देवताओं, ये किस बालक को तुमने मुझसे युद्ध करने को प्रेरित किया है? तुम्हें लज्जा नहीं आती? स्वयं तो सहस्रों वर्षों से मुझे पराजित कर नहीं सके, अब एक निरीह बालक को अपना अस्त्र बनाया है। जा, हे अबोध बालक, इन देवताओं के छल में ना, अपने प्राण बचा, मैं तुझे नहीं मारूंगा।
1: परंतु पिता की आज्ञा से मैं तुझे अवश्य मारूंगा।
2: आज तेरे आतंक का और तेरा अंत आ गया है। इस युद्ध में कुमार कार्तिकेय की विजय सुनिश्चित है। एक बार फिर अपने कर्मों का स्मरण कर ले और शिव पुत्र के हाथों नरक गामी हो। शिव पुत्र के हाथों नरक गामी हो। नरक गामी हो। नरक गामी हो।

0: देखिए कुमार कार्तिकेय ने शक्ति द्वारा तार का सुर का बद्ध कर दिया। अरे
1: पाही पाही रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पाही पाही रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
0: अरे कितने ही असुर प्राण रक्षा के लिए कुमार के चरणों में लौट रहे हैं और सहस्त्रों पाताल में घुसे जा रहे हैं। अरे ये क्या, कुमार परम पिता ब्रह्मा और श्री विष्णु के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं।
2: परम पिता श्री विष्णु, माता पिता और आप सबके आशीर्वाद से मैंने अपना नियत कार्य संपन्न किया।
3: पुत्र कार्तिकेय।
2: पिताजी आप?
3: पुत्र, तुम्हारी विजय का समाचार सुनकर हम तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा न कर सके। कार्तिकेय, माता पिता का आशीर्वाद तो सदा अपनी संतान के साथ रहता है। ये संतान का कर्म है जो उस आशीर्वाद को फलीभूत करता है। कर्म की अनुपस्थिति में आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं होता।
4: प्रभु शिव शंकर की
5: जय,
4: माता पार्वती की
5: जय,
4: कुमार कार्तिकेय की
5: जय।
6: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार सहस्रों काल से चले आ रहे दैत्य आतंक का कुछ समय के लिए अंत हो गया।
7: कुछ समय के लिए अंत हो गया, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा महाभाग सूत जी।
6: शौनक जी, अच्छे बुरे सत्य असत्य के बीच संघर्ष तो एक चिरंतन प्रक्रिया होती है। ये तो समय समय की बात है कि कब कौन कितने काल के लिए दूसरे पर हावी हो जाता है।
7: तो क्या तारकासुर के पश्चात और भी बलशाली राक्षस उत्पन्न हुए?
6: हाँ, तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष उत्पन्न तो हो चुके थे, परंतु उनके आतंक का आरंभ होने में अभी समय था।
7: तो इस बीच क्या हुआ सूत जी, वो बताइए।
6: ये बताने में भी थोड़ा समय है, इस प्रसंग को अगली भेंट में आगे बढ़ाएंगे।
8: श्रोताओं, शिव महिमा का आज का प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता चतुर्थ खंड के तीसरे से बारहवें अध्याय तक से लिया गया था।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना

0: गोरे अर्जुन पर तख हरे
1: महिमा कहीं न जाए तख्त बैठा

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

दूसरी कड़ी में आप धनुर्भंग तक का प्रसंग सुन चुके हैं। आज प्रस्तुत है श्री विश्व प्रकाश दीक्षित पटुक की लिखी हुई तीसरी कड़ी

0: रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ आनंदित हुए। सबके हृदय में यही अभिलाषा उत्पन्न हुई और सब शिवजी से यही प्रार्थना करने लगे कि राजा दशरथ अपने रहते श्री रामचंद्र को युवराज का पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा में बैठे हुए राजा दशरथ ने स्वभावतया हाथ में दर्पण लिया, उसमें अपना मुख देखा और शीश का मुकुट सीधा किया। राजा ने देखा श्रवण समीप भये सित के सा। उन्हें लगा मानो बुढ़ापा उपदेश कर कह रहा है,
1: नृप जब राज राम कह देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु।
0: राजा दशरथ

0: ने इस पर विचार कर शुभ दिन और सुंदर समय पाकर गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक मंत्री नगर निवासी शत्रु मित्र उदासीन सब कोई राम को मेरी ही तरह प्रेम करते हैं। आपके ही समान परिवार सहित विप्रगण भी उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। आपके पवित्र चरणों की धूली की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य ही नाथ अनुग्रह तोरे।
2: राजन आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है।
1: नाथ, राम करिय ही जुब राजू, आप कृपा कर आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मैं कहता हूं कि मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिसमें सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई चिंता नहीं, शरीर रहे या चला जाए।
2: सुनु नृप, जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरने न जाही, वही सब लोगों के स्वामी श्री राम आपके पुत्र रूप में है, इसलिए बेगी विलंबु न करिए नृप। साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबही, जब राम हो ही जुवराज।
0: दशरथ जी गुरु वशिष्ठ की अनुमति पाकर प्रसन्न चित्त महलों में आए। सबको एकत्र कर मंत्री सुमंत से कहा, जो पांच ही मत लागे नीका, करहु हरख ही राम ही टीका। मुनिवर की आज्ञा के अनुसार राज्याभिषेक का सब प्रबंध शीघ्र किया जाए। मुनिवर ने प्रसन्नतापूर्वक मृदुवाणी में संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, आवश्यक औषध, मूल फूल फल और पत्रादि अनेक मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनवाकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत सी मांगलिक वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की आज्ञा दी। मुनिवर ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा,
2: नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों के चारों ओर रोप दो, सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेवों की सब प्रकार से सेवा करो, ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ।
0: मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधारी करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनिवर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा था। राम के राज्याभिषेक की सब तैयारियां होने लगी, अयोध्या में बधावे बजने लगे और

0: एहि अवसर मंगल परम सुनि रहसेउ रनिवासु शोभत लख विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। रनिवास में भी ये मंगल समाचार पहुंचा दिया गया। सभी रानियां मंगल कलश सजाने लगी। कौशल्या ने नाना वित्तान दिया। वे प्रार्थना करने लगी, जे ही विधि होए राम कल्याणु देहु दया करी सो बरदानु। चारों ओर आनंदमय मंगल गान होने लगे। राम राज अभिषेक सुन ही हरखे नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। राजा दशरथ की इच्छानुसार मुनि वशिष्ठ श्री राम को उपदेश देने के लिए उनके महल में गए। गुरु जी का आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें भवन में लाए, विधि पूर्वक पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरणों का स्पर्श करके बोले,
1: सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल तमनु। नाथ, उचित तो ये था कि प्रेम पूर्वक इस दास को ही बुला भेजते। नीति भी यही कहती है, किंतु आपने बड़प्पन त्याग स्वयं यहां पधारकर मुझे जो स्नेह दिया उससे आज ये घर पवित्र हो गया। आयुष होई सो करो गोसाई सेवक लहे स्वामी सेवकाई।
2: भला राम ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं। रामभद्र, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम करहु सब संयम आजू जौ विधि कुशल निबाही काजू।
1: जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मैं आपके आशीर्वाद का अभिलाषी हूं। गुरुदेव ये क्या कहकर चले गए, हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ, लेकिन इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही हो।
0: इधर तो नरनारी राज्याभिषेक के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर बिघन मना वहीं देव को चाली, क्योंकि तिनहि सुहाइन अबध बधावा चोर ही चांदिन रात न भावा। सरस्वती को बुलाकर देवताओं ने विनय की, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे राम राज्य को त्याग कर वन को जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की बात सुनकर सरस्वती पछताने लगी, किंतु देवताओं की बार बार विनय सुनकर उनकी बुद्धि पर पश्चाताप करती वे वहां से चल दी। ऊंचे निवास नीच कर तूती देख न सकहीं पराई विभूति। किसी प्रकार वे अयोध्या आई और नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी अजस पिटारी ताही कर गई गिरा मति फेरी। सरस्वती देवलोक को वापस चली गई। तदनंतर मंथरा नगर की सजावट देखकर लोगों से उत्साह का कारण पूछती हुई श्री राम के राज तिलक की बात सुनकर हृदय में जल उठी। वो बुद्धिहीन दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार ये काम रात ही रात में बिगड़ सकता है। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, वैसे ही श्री राम के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य को बिगाड़ने की चालें सोचती हुई मंथरा भरत मां तो पह गई बिलखानी।
3: अरे मंथरा, तू उदास क्यों है? गालू बड़ तोरे दीन लखन सिख अस मन मोरे।

0: अरे कहते क्यों नहीं, राम राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं।
1: कत सिख दे हमई को माई, गालु करब के ही कर बलु पाई, राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जही जनेसु दे चुभ राजू। कौशल्या के तो विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, इसीलिए वे कर्म में फूली नहीं समाती। मुझसे क्या पूछती हो, देखहु कसना जाई सब शोभा, जो अवलो की मोर मनु छोभा, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हो बस नाहु हमारे। रानी तुम्हें तो तोशक तकियों से सजे पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं देती।
0: बस बस चुप रह, पुनिया से कब हूँ कहा से घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावा तोरी।
1: हमें क्या, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते।
0: प्रिय वादिनी सिख दीना हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन राम का राज्य तिलक होगा। सूर्यवंश की तो ये रीति है कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक बने। राम तिलक को जो साचो हूँ काली, देव मांग मन भावत आली। राम को सहज स्वभाव से कौशल्या के समान ही सब माताएं प्यारी हैं। मो पर गरज ही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अगर विधाता कृपा करके मुझे दोबारा मानव देह दें तो ये भी दें कि राम पुत्र और सीता वधू हूं। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके राजतिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच बता कि क्या बात है, हर्ष के समय विषाद करने का क्या कारण है।
1: एक ही बार आस सब पूछी, अब कुछ कह जीव करी तुझी। फोर जोग कपारू अभागा, भले हो कहत दुख रव रही लागा। अरे माई तुम्हें तो वो ही प्यारे लगते हैं जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें कड़वी लगती हूँ। हम हूँ कही बाब ठकुर सुहाती, नहीं तो मौन रहू दिन राती। विधाता ने कुरू बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष देना, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कौन पुहो हम ही कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, छमही देव बड़े चूक हमारी।
0: अरे तू बुरा मान गई, तू तो मेरे हित की ही कहती है, बता तो भला क्या बात है।
1: तुम पूछो मैं कहत डरा हूं, थरे हूं मोर घर फोरी ना हो। पर चलो मैं तो आपको अपना सब कुछ मानती हूँ, इसीलिए कहती हूँ। रानी तुमने जो कहा है कि तुम्हें सीता और राम प्यारे हैं और राम को तुम प्यारे हो, सो ठीक ही है, लेकिन रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रूप होई प्रीते। देखो सूरज कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूरज कमल को चलाकर भस्म कर देता है।
0: अरे तू कहना क्या चाहती है मंथरा, साफ साफ कह।
1: सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है,
0: क्या
1: उपाय की पार लगाकर उसकी रक्षा करो। तुम्हें ही न सोच सुहाग बल, निज पस जान न हुराओ, लेकिन रानी मन मलीन मुंह मीठ नृप, रावर सरल स्वभाव।
0: मंथरा
1: राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पा सकता, उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भरत को जो ननियाल भेज दिया उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी सेवा करती हैं, एक भरत की माँ ही ऐसी है जो पति के बल पर गर्व करती है। इसीलिए

0: नहीं, कौशल्या को तुम बहुत ही चुभ रही हो। वो कपट करने में बड़ी चतुर है, इसीलिए उसके हृदय का भाव आसानी से जाना नहीं जाता।
1: लेकिन राजा?
0: हाँ, राजा ही तुम पर प्रेम अभिषेकी, सबती स्वभाव सकई नहीं देखी, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत के यहाँ ना होने पर राम के राज तिलक के लिए लगन पक्का करा लिया।
1: लेकिन राम का राज तिलक हो?
0: राम का राज तिलक हो, ये तो रघुकुल के अनुकूल ही है। ये बात सबको सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है।
1: आगे की क्या बात मंथरा?
0: भगवान करे उसका उल्टा फल कौशल्या को ही मिले।
1: मंथरा, तुझे मेरी सौगंध, तू कुछ छिपा मत, सब सच सच बता। तुझसे बढ़कर मेरा हितकारी भला और कौन हो सकता है?
0: कहाँ पूछो, तुम अबहू न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। पूरा पखवाड़ा बीत गया नगर को सजते और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। अगर मैं अपनी ओर से बना के झूठ कहती हूँ तो भगवान मुझे दंड देगा।
1: नहीं मंथरा, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, तू झूठ क्यों कहने लगी?
0: अगर कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। रेख खचाई कहूं भल भाखी, भामनी भयहू दूध कई माखी। अगर अपने बेटे भरत सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। कत्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे।
1: मंथरा,
0: रानी धीरज धरिए, घबराने से काम नहीं चलेगा, साहस के साथ कोई उपाय सोचिए।
1: मंथरा, तू ठीक कहती है, दाहिनी आंख नित भर गई मोरी। मैं रोज रात को बुरे सपने देखती हूँ, लेकिन अपने अज्ञान के कारण तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी, सूत सुभाओ, दाहिन बाम न जानो काओ। जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। न जाने दैव ने मुझे एक साथ ही यह कठिन दुख किस पाप के बदले दिया।
2: नई हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर भी सवति सेवकाई।
1: शत्रु के वश में रहकर जीने से मर जाना अच्छा है।
0: रानी, असकस कहूं माने मनूना, सुख सुहाग तुम कहूं दिन दूना। पर कह देती हूं, जे ही राउर अति अनभल ताका, सोई पाये यहु फलु परिपाका। स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न दिन में चैन है, न रात को, न भूख लगती है, न नींद ही आती है।
1: मंथरा, तब?
0: तुम चिंता मत करो रानी, मैंने ज्योतिषियों से पूछा था, उन्होंने रेखाएं खींचकर हिसाब लगाकर कहा, भरत भुआल हुई ये साची।
1: सच?
0: रानी, अगर तुम कहो तो मैं एक उपाय बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में तो है।
1: परम कूप तो वचन पर, सकौ पूत पति त्याग। जब तू मेरा ये महान कष्ट देखकर कह रही है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी, तू कह तो सकी।
0: स्वामिनी, सुद अही है कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, उसके अनुसार दुई वरदान भूप संथाती, मांगहूं आज जुड़ा पहुंचाती। पुत्र को राज और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो।
1: सखी मंथरा,
0: एक बात का ध्यान रखना, जल्दी मत करना। भूपति राम सपत जब करें

0: मांग हूँ, यही बचन डट रही। हाँ। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरा कहा मानो, सीधे गोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, सहसा ही राजा की बातों में मत आ जाना।
1: सखी, तू मुझे बहुत प्रिय है, प्राणों से भी प्रिय, तू बहुत ही बुद्धिमान है। संसार में मेरा तेरे समान हितकारी दूसरा नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौं विधि पुरब मनोरथ काली, करूं तो ही चख पूतरियाली।
2: इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार का आदर सम्मान देकर कोप भवन गवनी कह के श्रोताओं,

0: अंततो गत्वा सांझ समय सानंद नृप गयौ केकई गें।
1: लेकिन कोप भवन सुनि सकुचे उराव,
0: डर के मारे राजा के पैर आगे नहीं उठते।
1: कैसी विडंबना है, स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर निवास करता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो।
0: राजा ने देखा कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के सभी आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं।
1: श्रोताओं, उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेश कैसा लग रहा था, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो।
0: किसी प्रकार राजा कैकेयी के पास गए और कोमल वाणी में बोले,
2: प्राण प्रिय, तुम किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बता। अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर केही जम चैलीन्हा। कहू केही रंग कही करौ नरेसु, कहू केही नृपही निकास हो देसु। प्रिय, देवता भी अगर तुम्हारा शत्रु होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। कीड़े मकौड़ों के समान वे सारे नर नारी तो चीज ही क्या है। सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो सदा तुम्हारे मुखचंद्र का चकोर है। प्रिय, मेरी भुजा, कुटुंबी, सर्वस्व, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तुम्हारे अधीन है। मैं सच कहता हूं, मुझे राम की सौगंध है, मैं तुमसे कुछ भी कपट करके नहीं कह रहा। तुम हंसो और प्रसन्नता के साथ मन चाहा मांग लो, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजाओ। प्रिय, अवसर को अवसर तो मन में विचारो। भामिनी, भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं,

0: सुनैने, तुम मंगल साज सजा लो।
1: मांगु मांगु पै कहो पिए, कबहू न देहु न लेहु। आपने दो वरदान देने को कहा था, मुझे तो उनके मिलने में भी संदेह है।
0: अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है ना? तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूल जाने का स्वभाव तुम जानती ही हो, मुझे भी याद नहीं रहा। अब तुम झूठे हो, हम ही दोष जनि देहु, दुई के चार मांगी मकुलेहु। तुम जानती ही हो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाई। और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। प्रिय, एक तो सत्य स्वयं ही सारे उत्तम पुण्यों का मूल है, उस पर मेरे मुंह से राम की शपथ निकल पड़ी है।
1: तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका।
0: अच्छा
1: नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी।
0: मोर मनोरथ सुंदर फूला, भरत करिनी जिमि हाथे समूल। अब सुझार दीन सी अचल विपत्ति कह नहीं। आह, क्या होने को था और क्या हो गया।
1: भरत कोई राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। क्या मैं आपकी विवाहिता नहीं हूँ जो मेरी बातें आपको बाण की तरह लगी। अगर आपको ऐसा ही करना था तो पहले ही सोच समझ कर बात करते। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुकुल में सत्य प्रतिज्ञ नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य सराही कहे बरु देना, जाने हूँ ले ही मागी चबेना। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन को निभाया।
0: इससे कैसी कठोर परिस्थिति पैदा कर दी कि उससे बच निकलना ही मेरे लिए कठिन हो गया। क्या सचमुच ही ये मेरे प्राण लेकर रहेगी? ये विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी संग करू साथी। मैं सवेरा होते ही दूत भेजूंगा, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकाल कर सब तैयारी करके घोषणा पूर्वक मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत को तो वे बहुत प्रेम करते हैं। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, इसलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूं स्वभाव, राम मातु कछु कहे उन्हें काहु। मैं सब कीनी तो ही बिन पूछे, ते ही ते परे हो मनोरथ छूछे। प्रिय, अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सजा लो। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख है कि तुमने दूसरा वरदान असमंजस भरा मांगा है। अजहू हृदय जरत ते आच, रिस परिहास इस साचे हु साच।

0: क्रोध को त्याग कर राम का अपराध बताओ। हर कोई तो कहता है कि राम बड़े साधु हैं। तुम स्वयं भी राम की सराहना किया करती थी और उन पर प्रेम भी रखती थी। अब तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। भला जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वो माता के प्रतिकूल आचरण कैसे करेगा? प्रिय, हंसो और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके वर मांगो, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जिए दुख दीना। कहूं सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समझी देख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आहीना।
1: आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है वो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मोहिना बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मात भली सब पहचाने। कौसल्या ने जैसा भी भला चाहा है, मैं भी उसे वैसा ही फल दूंगी, वो भी जीवन भर याद रखेगी। होत प्रातु मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन मार।
0: हा राम, हा राम, हा राम।

0: क्रोध की नदी की तरह उफनती हुई कैकेयी को देखकर राजा दशरथ ने समझ लिया कि बात सच्ची है और अब तियमिस मींच उसी इस पर नाची। अंततो गत्वा राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उससे कहा,
1: चने दिन कर कुल हो सी कुठारी, मांगु मात अब ही देव तो ही, राम बिरह जनि मार असी मोही, राखु राम कहूं जही तही भाती, नाही तो जर ही जन्म भरी छाती।
2: अगर अंत में आपको ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम के ही बल कहू, दुई की होई एक समय फुआला, हसब ठठाई फुलाऊ बगाला, दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या ये संभव है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखाएं और कहीं चोट भी न लगे? अब या तो अपने वचन छोड़ दीजिए या फिर धीरज रखिए, इस प्रकार असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं।
1: तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे पिशाच होकर लगा, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। भरत तो फूल कर भी राजपद नहीं चाहता, तेरी कुबुद्धि में होनहार बसी है, ये सब मेरे पापों का ही फल है कि कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। मगर याद रखना, ये अयोध्या जिसे तू आज उजाड़ रही है फिर फली प्रकार बसेगी, समस्त गुणों के धाम राम की प्रभुता भी होगी, सब भाई उनकी सेवा करेंगे।

और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। केवल केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तो इन्हीं इकला करूं सोई, लोचनोट बैठ मुखोई।

अंत में तू पछताएगी कि जो तू दांत के लिए एक गाय को मार रही है। हाँ, राम, हाँ, राम, हाँ। भगवान करे सवेरा ही ना हो, ये रात इसी तरह बनी रहे। भगवान सबको ऐसी सुबुद्धि दे कि कोई भी राम से इस बात की चर्चा न करे। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप उदित न हो, अयोध्या को व्याकुल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।